0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 रेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: नेरगा भन्ने महाराजले सेपारो भइरहनु नेरगा भन्ने महाराजले सेपारो भइरहनु के को दुख के को सुख के।